0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
3: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
4: We're playing your song.
5: Pakistan, for the first time, experience Ali Noor in an exclusive live concert series across Pakistan. From the timeless anthems that define a generation to the music that continues to inspire millions. The Surrender Tour is an intimate celebration of Ali Noor's extraordinary musical

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89, we're playing the song.
6: Explore karo, kuch new karo at United Charter Schools. Kyunki yahan har study venture banta hai ek adventure. Admissions open for all classes up to matriculation and O level. United Charter Schools, infinite possibilities.
7: A project of Beacon House.
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
9: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
10: शौकत खानम कराची की तकनीक
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
12: City FM 89
13: 106 out of 123 That's where Pakistan sits on the hunger index This is more than a bad rank Pakistan is a country struggling with malnutrition stunting